0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: यस सर
1: ओ बीबी
0: यस आई
1: व्हाट्स योर
0: हो
1: नाना व्हाट इन यू कोको कोपे
0: नाजी
1: ना पोगा हाँ ओ पोको जवान ये चीज़ उनकी
0: ना में दासे पां
1: इसमें दासे ऐ ना वहाँ वो बना बो या मामे ऐ We are living a crazy world.
0: Crazy world, wow.
1: Ah, okay. Papa is you, the young man who flew crowns, so me and also,
0: Mati, what's your,